सूचना संगीत मनोरंजन को अटुसाहिनो यो हो पश्चिम चितवन को आवाज सामुदायिक रेडियो साहिनो साहिनो साहिनो 89.8 मेगाहर्ट्ज।

0: रेडियो साइनो 89.8 MHz तपाई हाम्रो अटुट साइनो।
1: साहिनो समय सूचक अहिले मध्याह्नको 12 बज्यो। इट्स 2:00 PM।

0: रेडियो साइनो 89.8 MHz तपाईँ हाम्रो अटुट साइनो।
1: साहिनो समय सूचक अहिले दिउँसोको 1 बज्यो। इट्स 1 PM।

0: ये रख लो पैसे।
1: क्या घर ये घर भी आ गया
0: दौलत।
1: कौन?
0: पता नहीं, तारुपी की गाड़ी चला रहा था। मरते मरते बची हूँ मैं।
2: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है।

दुख बजाए घंट बजाए देता खुशी पारना हुने यो मन लो दिन पारना सुना दिन बन मा संसल भो।

राग सुनौली न कली न को भक्ति जीव प्रसन्न देवताले ब्रह्मांडलाई सहति।